0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4? 4।
1: कब तक वापस आएगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
1: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 AM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही, यहीं। चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
5: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Big 106.2, the B.

0: खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: The songs that raised us, the stories that stayed with us. Your weekend throwback begins now. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी, देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ है।

0: खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।
1: Big 106.2

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज एंड हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रेवोल्यूशनरीज दैट स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो. माय नेम इज सिड एंड दिस इज दैट हिस्टोरिकल ड्रामा दैट्स बिल्ट अराउंड यंग इंडियन रेवोल्यूशनरीज जिन्हें विश्वास था कि आजादी फ्रीडम पेशेंस या पेटिशन से नहीं मिलेगी, डायरेक्ट एक्शन से मिलेगी. डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा. बिग प्री रिलीज बज वॉज अबाउट द स्केल ऑफ द शो, कि कितने पैसे खर्च कर दिए एंड ऑफकोर्स द कास्टिंग जो कि बहुत हटके है. स्पेशली भुवन बाम इस शो में है तो पीपल हम लोग जेन्युइनली कंसर्न थे, क्यूरियस थे कि भुवन बाम को क्या हम सीरियसली ले पाएंगे, विल ही बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस वेरी सीरियस पीरियड ड्रामा. और ये जो क्यूरियोसिटी है That's turned into one of the biggest surprises of the show, I feel. Visually, काफी expensive लगता है, period detailing काफी impressive है, political intrigue है, danger, idealism, ये सब कुछ, it keeps us invested. But does the show have enough legs to sustain that promise? That's what we're going to talk about today on The Big Binge. Coming up, we're going to start with one of the really good aspects of The Revolutionaries on Amazon Prime. This is The Big Binge with me, Sid.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

Big 106.2 पर this is the big binge with me is Sid. Now it's time to talk about the negative, not so good aspects about Amazon Prime की latest series called The Revolutionaries. Now this show has a problem. It is a usual problem कि यार शो थोड़ा सा स्लो है. कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं शो में जहां पर बार बार चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं एंड देन यू फील लाइक सेइंग यार हाँ मैं समझ वी गेट इट. एक बार आपने समझा दिया, बार बार क्यों वही वही चीजें समझा रहे हो यार. वी नो वेयर वी आर, व्हाट टाइम इट इज एटसेट्रा. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल द टाइम एवरी टाइम ऑल ओवर अगेन एंड यू आर लाइक यू नो डेस्परेट फॉर द स्टोरी टू मूव फॉर भाई कहानी आगे बढ़ाओ वाली सिचुएशन आपके साथ होगी. आई एम नॉट लाइंग. कुछ कैरेक्टर्स ऊपर से ऐसा है कि दे आर मोर कंपेलिंग देन द अदर्स. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो अदर्स की बात हो रही है तो यू आर लाइक अरे यार वो वाला कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, उस पे वापस कब जाएंगे, उसकी कहानी कब बताओगे. एंड देन क्योंकि ये सीरीज इट डील्स विद रियल हिस्टोरिकल फिगर्स, कुछ हिस्ट्री के रियल इवेंट्स पे ये बेस्ड है, कुछ ऐसे मौके आएंगे जहां पर द ड्रामा कैन फील अ बिट टू पॉलिश्ड, थोड़ा ज्यादा ही सिनेमैटिक. यू एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ यू नो अ मेस, थोड़ी अर्जेंसी एंड देन एवरीथिंग डजंट हैव टू बी टू पॉलिश्ड, लेकिन एवरीथिंग इज अ बिट टू ब्यूटिफुल इन सम स्ट्रेचेस. एंड अगर आप एक फास्ट पेस्ड एक्शन सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिस सीरीज इज डेफिनेटली नॉट दैट सीरीज. इट इज मच मोर डिलिबरेट. द क्वेश्चन इज कि इतना सारा पेशेंस आपने इन्वेस्ट किया, विल दैट पेशेंस पे ऑफ? शुड यू स्ट्रीम इट और स्किप इट? द वर्डिक्ट कमिंग अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

Big 106.2, but this is The Big Binge with me, Sid. It's now time for the most important but the most difficult part of the show, and that is the verdict. Hum baat kar rahe the aaj about The Revolutionaries, the new show on Amazon Prime. Isko stream kare ke skip kare, Sid bhai? Gyan to bahut ho gaya. Chalo, let me tell you my verdict. And the verdict is, you should actually stream it. Lekin, the condition is that if you are a very patient person, then you should stream it. Ye koi perfect show nahi hai. Pacing काफी ऊपर नीचे है, कुछ episodes they could have been much much tighter, not every character lands equally well, लेकिन अगर आप एक भाई खाता करेंगे, अगर आप एक balance sheet बनाएंगे, the good actually outweighs the bad. Ambitious show है, ब्यूटिफुली माउंटेड है, एंड एक ऐसे पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करता है जिसको बहुत ही इमोशन और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्केल, एंड दे हैव एक्चुअली मैनेज टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ दैट. भुवन बाम इज जेन्युइनली वेरी गुड. देखो, अगर आप भुवन बाम के फैन हैं तो डेफिनेटली दिस बिकम्स एन अनमिसेबल शो. परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इनकी, ऑनसेंबल कास्ट गिव्स द शो रियल वेट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप शो देख चुके होंगे, it leaves you interested in the people behind the history. You'll be googling, you'll be wikipediaing, and that's more important than anything else when you see a historical drama, in my opinion. So agar aap serious period storytelling enjoy karte hain, you don't mind like a slow burn kind of a show, then watch The Revolutionaries on Prime Video. So that's my verdict on The Big Binge. Go stream The Revolutionaries. This is The Big Binge with me, Sid.

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

बिग बार 6.2 पे इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ फ्रॉम द बिग बेंच. भाई बड़ी मेहनत का काम होता है कि आपसे पहले सारे के सारे शोज और ओटीटी के कंटेंट देखो, पुट माय नेक ऑन द लाइन एंड देन गिव यू अ वर्डिक्ट. आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग इट. आई मीन इफ यू लाइक इट, डोंट लाइक इट, लीव अ कमेंट ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. दैट इज आर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफएम. अगर आप नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर लीजिए. फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही नहीं, सम तरीके टू विन सम बिग प्राइजेस इंक्लूडिंग अ ट्रिप टू जर्मनी. बट डोंट टेल एनीबॉडी, जस्ट गो इन क्विकली क्वाइटली. Follow us. I'm Sid Sid, SIDACTH, signing off. I'm going to see you on a Monday morning on The Big Breakfast, 7 to 11, the show that gets you up and running. Till then, enjoy your weekend. Bye-bye.

0: top 40 biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. That was Gana number 38 from Dhurandhar the Revenge. Keeping you company, I'm Mansi. Moving on to number 37, has to be a beautifully recreated Gana. Movie ki bahut tareef maine suni hai. क्योंकि ये हुमा कुरैशी और साकिब सलीम जो भाई बहन भी हैं, इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी है बेबी डू डाई डू. वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड, बट आई मिस्ड वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर्स. सो या, आई वुड वेट फॉर द ओटीटी रिलीज. बट इसी मूवी के लिए रिक्रिएट हुआ ये गाना इस हफ्ते ऑन नंबर 37. इसी के साथ नंबर 36 पर अ ब्रांड न्यू एंट्री, रवि किशन जो छाए हुए हैं ऑन मीम्स, ऑफ कोर्स इन मूवीज, टीवी शोज, पॉडकास्ट. आई थिंक रवि किशन इज द परफेक्ट एग्जांपल कि जब आपका वक्त आता है ना तो छप्पड़ फाड़ के आता है.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है. सुनो, नाम या दाम?
0: Money follows my brother. Beautiful, beautiful gana. मतलब it's a party anthem. It's got the Ravi Kishan vibe. And आप पूरा गाना सुनेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा. इस हफ्ते on number 36.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: भाई वो कुछ 2-4,000 रुपए की जरूरत थी अपने.
5: दो या चार?
4: चार.
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं. चार पांच दिन में?
5: चार या
4: पांच? पांच.
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
2: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 37.

0: नंबर 36।
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

One of the most heard songs on Spotify since 2025, by the way. अर्ज किया कोक स्टूडियो का अनुव जैन की आवाज में. इसी के साथ एक और सिंगल है इस हफ्ते ऑन नंबर 35 एंड आई विश जिन्होंने गाना गाया है वो भी सिंगल हो. आई हैव सच अ बिग बिग मैसिव क्रश ऑन परेश पहुजा.

टॉकिंग अबाउट वाइब, अ ब्रांड न्यू एंट्री. मूवी का नाम वाइब है. 18 सितंबर को ये मूवी रिलीज हुई है. मूवी इज एक्शन थ्रिलर कॉमेडी, जिसे लिखा है, डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है कुणाल खेमू ने. एंड ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर. बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ मडगांव एक्सप्रेस एंड दिस इज द सेकंड वन दैट ही इज डूइंग. ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. लोग कह रहे हैं द मूवी डेफिनेटली इज अ वाइब. देयर इज कुणाल खेमू इन द मूवी. वी हैव गॉट स्पर्श श्रीवास्तव, प्रिटी जिंटा मेकिंग अ कमबैक, एंड अ स्पेशल कैमियो शर्मिला जी, शर्मिला टैगोर जी का, जो कुणाल की सासू माँ भी है. सो ओवर द वीकेंड इफ यू वांट टू वॉच अ गुड मूवी, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच द वाइब बिकॉज इट हैज ऑल द फील्स. नंबर 26.

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: नंबर 15.

10 this week. This is Ranaji 2.0, Tanish Bagchi ka magic of recreating the great bangers from the 90s. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. मैं हूँ मानसी. मूविंग ऑन टू नंबर 9. चिपक गया ये गाना कॉकटेल 2 से. वी गॉट जब तलक. एंड टॉकिंग अबाउट कॉकटेल 2, विल नॉट गेट टू सी अ लॉट ऑफ शाहिद कपूर इन द नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2026. आई मीन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई रिलीज है नहीं शाहिद कपूर की. आई विल गेट टू सी हिम फर्जी 2 में, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन द मिड ऑफ 2027. देन वी ऑल्सो गेट टू सी हिम इन अ मूवी कॉल्ड ड्रैगन, जो प्रशांत नील का डायरेक्टोरियल है एंड एक्सपेक्टेड रिलीज है 11 जून को. शाहिद कपूर जूनियर, NTR, आलिया भट्ट और अनिल कपूर के साथ दिखेंगे. सो या इट्स High octane international action thriller. So yeah, next year he's got quite a lineup, but I think he's done for 2026 with O Romeo and Cocktail 2. Filhal is hafte on number 9. इसी के साथ नंबर 8 पर धमाल 4 से we've got Tanish Bagchi.

0: Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स
2: Countdown. Here we go.
1: सिर्फ बिग 106.2 बीट ऑफ बॉलीवुड पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ आपके साथ, this is the Big Recommends and in this show आज मैं recommend करने वाली हूँ ऐसी Instagram viral recipes जो आप घर पे बना के खा सकते हो. And since गणपति उत्सव चल रहा है तो there's matcha modak coming your way and just not that, there's a diet coke का कुछ soda version with दूध which we have tried in our childhood a lot of times. लेकिन ये वाला कैसा लगता है बताती हूँ, until then keep it locked to Big 106.2.

106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड मैं बात करने वाली थी एक इंस्टाग्राम वायरल रेसिपी के बारे में जिसका एक सिप लेते ही ठंड ठंड पहुंच जाती है यार. मैं बात करूँ डाइट कोक की, विच इज एक्चुअली यू नो हम सबका कॉन्स्टेंट साथी, लेकिन डाइट कोक के साथ एक और साथी आ चुका है एंड दैट इज क्रीम या फिर दूध. हम बचपन में यार सोडा बॉटल लेते थे, विच वी यूज टू कॉल दूध सोडा, दूध आई मीन मिल्क एंड सोडा, दैट बंटे वाली बॉटल का रेड कलर वाला सोडा. एंड हम रात को ये जनरल ड्रिंक होती थी खाना खाने के बाद कि हम ये मिला के खाएं. एंड कुछ लोग उस दूध में चीनी भी डालते थे, आई मीन ऑफकोर्स एक्स्ट्रा शुगर, वाई नॉट. लेकिन दिस वर्जन इज द क्रीम वर्जन. इसको बहुत लोग मैक फ्लोट भी बोलते हैं यार. पार्टी से याद है आपकी, पार्टी में ये ड्रिंक बहुत अच्छी ऐड हो सकती है. एग्जैक्ट रेसिपी क्या है, वायरल कौन सी चल रही है, बताती हूँ अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्स टू बिग 106.

0: सुमिति चौहान का ट्रैक सॉन्ग का नाम था दिल डांस मारे। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड रेकमेंड कर रही हूँ मैं आपको दिस वायरल इंस्टाग्राम ड्रिंक दैट्स कॉल्ड क्रीमी डाइट कोक। एक ग्लास में अलग से डाइट कोक ले लो, ठीक है, उसमें बहुत सारी आइस डाल लो। अलग से ग्लास में 1/4 आपको क्रीम ऐड करनी है, वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करना है, अपने मन पसंद का कोई भी स्वीटनर ऐड करना है एंड नाउ यू हैव टू फ्रॉथ इट। अब जो फ्रॉथ मिक्सचर है आप उसको पोर कर दो डाइट कोक के ऊपर। Mix it well and that is your dud soda ready. I mean it's soda, right? Diet Coke is soda. That cream is milk. आपने बस वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, बहुत सारे और फ्लेवर्स ऐड करे हैं और ये मैंने जब ये वियर्ड कॉम्बो आपको लगता होगा लाइक फॉर मी इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉम्बो, मैंने अपने बॉस को बताया एंड शी गोज लाइक अरे करना शुरू हो गए, मतलब कम ऑन यार। आई थिंक सो फॉर ऑल द पंजाबी हाउस होल्ड इट्स अ वेरी कॉमन ड्रिंक जो हम रात को पीते थे सोने के पहले, लेकिन एक बार आप टेस्ट करके देखो, मैं बता रही हूँ आप बार बार भी हो गए।
1: तू ही मेरी मंजिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल।
0: It's 10/10 for me, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Recommends and in this hour recommend करने वाली हूँ मैं आपको this type of मोदक, this flavor of मोदक. गणपति चल रहा है एंड बहुत तरह के मोदक मैंने अभी तक टेस्ट कर लिए यार, एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस फ्लेवर आई एम अ फैन. मैं हर दिन ये फ्लेवर की ड्रिंक पीती हूँ यार, लेकिन दिस फ्लेवर इन दिस मोदक, ओह आई एब्सोल्युटली डाउट इट. किसकी बात कर रही हूँ, बताती हूँ ना. बिट अंटिल देन कीप इट लॉक्स टू बिग 106.2.

Diljit Dosanjh ka track song and I'm the proper Batola and that was the 2013 version. दिलजीत दोसांझ का वो इरा मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड कौन से इरा में आ गई हूँ यार, ये कौन से मोदक की बात हो रही है. बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स. गणपति चल रहे थे एंड यू नो बहुत टाइप के मोदक खाए हैं यार मैंने, लेकिन द ओरिजिनल वन उकड़ेचे मोदक. उसके अलावा भी मैंने पेड़े वाले मोदक खाए हैं, फिलिंग वाले मोदक खाए हैं, फ्राइड भी खाए हैं यार, लेकिन माचा मोदक देखने में तो हरे भरे कबाब लग रहे थे, लेकिन मैंने टेस्ट करे. बताती हूँ इफ आई रिकमेंड दिस और नॉट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच आई गिव इट. तब तक आप फ्लेवर इमेजिन करो और खाया है तो जरूर बताओ मुझे 800-1062 पे कॉल करके. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट कि यार कितना अजनबी सा लग रहा है ये मुझे मोदक खाते हुए, बिकॉज ये सिंपल नॉर्मल मोदक नहीं, ये माचा मोदक था। Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। This is the big recommends. This one viral dish on Instagram that's called matcha modak. गणपति फेस्टिवल चल रहा था एंड बहुत टाइप के मोदक यार फीड पर आते हैं, हमने खाए हैं प्रसाद में, घरों में मिले हैं, मैंने खुद बनाए हैं, खाए हैं, लेकिन matcha modak, I love matcha by the way. I can have it every day. मुझे हर उसका फ्लेवर पसंद है, मैंगो वाला, पाइन एप्पल वाला, इनफैक्ट मैंने लेवेंडर वाला भी टेस्ट किया है, लेवेंडर matcha drink, लेकिन matcha मोदक में दिल चाहता है कि मैं अपनी माचा की क्रेविंग खत्म कर दूं यार, ये माचा मोदक सुन के जो मेरे को हुआ है ना, लेकिन इज देयर एनी ग्रेटर माचा लवर देन मी जो माचा मोदक भी एक्सेप्ट कर लेगा?
1: मेरे फोटो को सीने से यार,
0: जिनको माचा पसंद नहीं है ना वो हमेशा उसको ग्रास से कंपेयर करते हैं, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस माचा मोदक टेस्टेड लाइक ग्रास। रिकमेंडेशन -10/10, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ.
1: That's it.
0: But I'll definitely करता हूँ.
2: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2.
1: The beat of Bollywood.
3: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स. एंड आप जितना मर्जी बाहर का जंक फूड खा लो, फास्ट फूड खा लो, अजीब अतरंगी रेसिपीज बना के आप अपने टेस्ट बड्स को शांत कर लो, बट द फ्रेशनेस यू गेट विद फ्रूट्स, दैट्स अनमैचेबल. लेकिन फ्रूट्स के साथ कोई भी अतरंगी रेसिपी मुझे चलेगी यार. एंड दिस टाइम इट्स इन बर्दुबाई. फ्रेश फ्रूट्स एंड होल फ्रूट्स दे रहे हैं यार. व्हाट इज इट अबाउट, बताती हूँ आपको इन अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स. फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम. कल मिलूंगी मैं आपको फिर से द बिग मिक्स 1 to 5 के साथ. आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, अवनी आपके पेज पर मिल जाऊंगी, AVNIYAAR. कोई रिकमेंडेशन है खाने पीने की, बाहर जाने की, तो डू लेट मी नो देयर एज वेल. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.